लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर्दा है। लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे भरना है। साधन चोर बनावे तू ना अल्लाह कोलों डरदा है।

0: महापावर रेडियो।
1: द्वापर रेडियो प्रोग्राम दस्तक एवरी सैटरडे एंड संडे न्यूयॉर्क
2: जी। दोस्तों सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो मंच उत्ते निघा स्वागत है। लैके हाजिर हाँ तुहाडी कचहरी च नवा नवेला प्रोग्राम जिंदगीनामा हाल दुनिया। आप सब नू आदाब सलाम नमस्ते ते प्यार भरी निक्की सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करदे आं सब राजी खुशी होणगे ते गल्लां बातां लैके। फ्राइडे वाला आखिरी दिन हफ्ते दा हुंदा है ते जिस दे विच तुहाडे नाल शामिल आ दो सवा दो घंटे कोशिश रहेगी ते गल्लां बातां करांगे ते नाल दी नाल अज नावल दी किताब दी बात पाउण दी जिहड़ी कोशिश रहेगी जिस दे विच किताब पंजाब दा आपां जिक्र कर रहे हैं लड़ी वार्ता दे विच उहदा लड़ीवार भाग जिहड़ा 11वां तुहाडे नाल अज लाइव दे विच सांझा करन दी जिहड़ी उम्मीद है ते उहनूं आपां अगे तोरांगे ते नाल दी नाल भारतीय समें दे अनुसार खबरां देश विदेश दीआं ते अज दे विचार दे नाल शुरुआत करांगे। समां ते स्थिति फिलर दीआं घड़ियां दे उत्ते इस वक्त शाम दे 7:09 दा समां है जी। भारत दे विच रात दे अपने 9:39 हो गए है। न्यूयॉर्क ते टोरांटो दीआं घड़ियां दे उत्ते दुपहर दा समां 12:09 दा ते कैलिफोर्निया ते वैंकूवर दे विच इस वक्त सवेर दे 9:09 घड़ियां दर्शा रही ने ते यूरोप दे विच शाम दे 6:09 यूके दे विच शाम दे 5:09 ने। लो दोस्तों करदे फिर शुरुआत अज दे विचार दे नाल ते अज दा विचार ते तवारीख 14 अगस्त 2026 दा दिहाड़ा ते फ्राइडे वाला दिन है जिस दे विच बात पाउंदे आ कि अज जो दुनियादारी दे उत्ते हो रहा सियासत विरासत दे विच हो रहा अज दा विचार कहिंदा है कि सियासत खून खराबे दी जंग है ते जंग खून खराबे दी सियासत है। ये जड़ी लिखत है अपने माऊ जे तोंग

0: क्या बात है।
1: तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी, तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी। तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी, तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी।

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मुँहों कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख लै माए, हुन साम के रख लै माए, मेरे गुड़िया पर टोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, बेगानिया च पोगल नू भेज के माए, बेगानिया च पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक, हुन लुक लुक

जिंद वादियां चे डुब गई जे समतरी जांदे ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, ओ अपने परछावे तो

जिंद वादियां चे डूब गई जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम की करा जे आपे चे की करा जे आपे चे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म तरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

0: दारू पीण दी ना जेड़ी तू पाई सी कदे अज रोया नी मैं तेरी ओ कसम तोड़ के।
1: बेदी मीरपुरी जी थोड़ा
0: आ क्यों भाई रफा।

दारू पीण दी ना नी दारू पीण दी ना जेड़ी तू पवाई सी कदे अज रोया नी मैं तेरी ओ कसम तोड़ के।

0: मेल्स ज्वाइन करते हैं, बॉयज ज्वाइन करते हैं, बट
1: अच्छा जी,
0: जिदा सीविंग कटिंग हो गया या फिर अपना स्टेनोग्राफी इंग्लिश हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया, ठीक है,
1: अच्छा जी,
0: इदां दे काम हैगे हैं जिहड़े कुड़ियां भी अप्लाई कर सकदियां ने कोर्स ट्रेड, या फिर इलेक्ट्रिशियन दा भी कुड़ियां काफी करदियां ने,
1: काफी
0: तां
1: वधिया कुड़ियां लई खेतर वधिया हैगा।
0: हांजी हांजी बिल्कुल।
1: होर कोई गल जिहड़ी तुसीं दसनी चाहुंदे हो इस खेत्र बारे?
0: इस खेत्र दे विच इह है कि देखो जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हां कि जिहड़े बच्चे हायर एजुकेशन च जाणा चाहुंदे ने, देखो इक चीज़ दा जरूरी तौर ते है कि पहला डिसाइड कर लेना चाहिदा बच्चे नूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर च जाना है या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, या
1: अच्छा
0: कि मैं
1: जी,
0: अपना खुद दा रुजगार खुलना है, कुछ भी अपना
1: हाँ
0: स्वयं
1: जी,
0: रोजगार बनाना, कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह करना है, फिर ओदी तैयारी उस अकॉर्डिंग होएगी।
1: अच्छा जी,
0: जिदां जे कोई बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक सेक्टर दे विच जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, तां उन्हूं थ्रेटिकल अपना बड़ा रखना पऊगा, मजबूत रखना पऊगा नाल नाल, क्योंकि ओदे विच बच्चे नूं टेस्ट देना पऊगा, वो टेस्ट कढ़ने पैणगे, ते नाल दी नाल उन्हूं अप टू डेट रहना पऊगा भी केड़े टेस्ट आ रहे ने, उन्हां दी तैयारी नाल दी नाल करदे रहना पऊगा। 2 साल दे दौरान जदों ओदा आईटीआई जद तक कोर्स कंप्लीट होगा, ओदे नाल नाल ही उह बच्चा या तो चलो जे जेकर वो बच्चा अंडर एज है तां वो डिप्लोमा कर सकदा है, अगर वो एज ओदी 18 तक हैगी है तां वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर या फिर कोई भी इदां गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेहड़े वो अप्लाई कर सकदा है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
1: अच्छा जी,
0: बट जिवें आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे हां, जेकर बच्चे ने
1: हाँ जी,
0: प्राइवेट सेक्टर च आना है तां उहनूं बच्चे नूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पऊगा, प्लस ओदी कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़े हैं बहुत मैटर करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट, मैं ये दसो भी जिहड़े वोकेशनल जिहड़े कोर्स होंदे ने ते आईटीआई, इन्हां दोनों दे खेत्र विच की फर्क हैगा?
0: वोकेशनल कोर्सेज जिहड़े के स्कूल्स दे दौरान बच्चे लै लैंदे आ, जिदां कटिंग सीविंग दे भी काफी हुंदे आ, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफी सारे हो जांदे, इलेक्ट्रिशियन वेल्डर इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जांदे आ, तां उहनां दा फायदा इह हुंदा कि जिहड़े बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहुंदे आ
1: हाँ
0: उहनां दे
1: जी,
0: लई उह इक प्लेटफॉर्म इक बेस बन जांदे आ,
1: अच्छा जी,
0: उहनां नूं उहनां बारे पहलां ही नॉलेज हो जांदी है ना।
1: अच्छा जी,
0: ते जिहड़े बच्चों ने मान लो आईटीआई या फिर उद्योगिक खेत्र दे विच जाना नहीं है, या फिर
1: हाँ
0: उन्हां
1: जी,
0: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चों दे लई सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करने दे विच ही बेहतरी है उन्हां दी।
1: अच्छा जी।
0: हांजी
1: मैडम साहिबाना जी, तुसीं बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतियां दे नाल सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: स्रोतियां दा असीं धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े प्यार नाल सुणिया,
0: जी,
1: ते अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सुखबीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।

अपनी खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़ियां ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

सिंह सूर में वीरा आनंदपुर किले नू सी घेरा पै गया फौजां कोल कुछ खाण नू ना रह गया। आनंदपुर किले नू सी घेरा पै गया फौजां कोल कुछ खाण नू ना रह गया। ओ चढ़त देख गुरां दी सी बैरी सड़िया कला कला सिंह लखा नाल लड़िया। ओ कला कला सिंह लखा नाल लड़िया किला छड़ गुरु सरसा ते आ गए कत के वहीरा बैरी पिछे आ गए। सोहा तोड़ टिड्डी दल आवे चढ़िया कला कला सिंह लखा नाल लड़िया जी कला कला सिंह लखा नाल लड़िया। ओ सरसा नदी जा बगे ठाठा मार दी सरसा

0: महापावर रेडियो।
1: रेडियो के प्यारे श्रोतियो, प्रोग्राम कवि दरबार दे विच हरवंश सिंह वालों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करी। प्यारे श्रोतियो, अज 27 दिसंबर 2020 दिन एतवार है, शाम के 5 बजते हैं। असी अपना हफ्तावारी प्रोग्राम कवि दरबार लैके हाजिर हाँ। इस वार कुछ तकनीकी मजबूरिया कारण जड़ा आ बहुत काली दे विच प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, तो इस दे विच बहुत सारिया खामिया होनगियां। इन्हां खामिया नूं सारिया ने नज़रअंदाज करते हुए इस कवि दरबार का आनंद मानन की कोशिश करनी। तो सब तो पहला इस कवि दरबार का आगाज करने लई मैं पटियाला तो शायर सरदूल सिंह भला जी नूं सद्दा देंगा। वो दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे लालां बारे, छोटे साहबजादियां बारे अपनी एक कविता जिहड़ी लैके हाजिर हो रहे ने। सरदूल सिंह भला जी, दुआबा रेडियो दे मंच ते तुहाडा निघा स्वागत है।
2: मैं एस एस भला पटियाला, अज छोटे साहबजादियां नूं ठंडे बुरिज विच माता गुजर जी समेत कैद किया गया सी। कहरां दी ठंड पै रही सी, पर ओ बच्चे माता भुखे पाने बिना किसे कपड़े दी ओट उस ठंडे बुरज दे विच बैठे पे सन, जिन्हां दी एक कविता में लिखी है, ओ किरपा करके सुनना। मैं बच्चे दादी नूं की कहंदे हन, एक कविता मेरी पाशव भाग ने अवल कविता करके सन्मानित किया सी। श्रवण करो जी। साब जादे अखण दा दिए नी,

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना।

जिस दिन चुप तू हो जाएगा, इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

लगती सही, कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना। कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना।

0: करते हैं, बट
1: अच्छा जी,
0: जिदा सीविंग कटिंग हो गया या फिर अपना स्टेनोग्राफी इंग्लिश हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया, ठीक है,
1: अच्छा जी,
0: इदां दे काम हैगे आ जिहड़े कुड़ियां भी अप्लाई कर सकदियां ने कोर्स ट्रेड, या फिर इलेक्ट्रिशियन दा भी कुड़ियां काफी करदियां ने,
1: काफी
0: तां
1: वधिया कुड़ियां लई खेतर वधिया हैगा।
0: हांजी हांजी बिल्कुल।
1: होर कोई गल जिहड़ी तुसीं दसनी चाहुंदे हो इस खेत्र बारे?
0: इस खेत्र दे विच इह है कि देखो जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हां कि जिहड़े बच्चे हायर एजुकेशन च जाणा चाहुंदे ने, देखो इक चीज़ दा जरूरी तौर ते है कि पहला डिसाइड कर लेना चाहिदा बच्चे नूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर च जाना है या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, या
1: अच्छा
0: कि मैं
1: जी,
0: अपना खुद दा रोजगार खुलना है, कुछ भी अपना
1: हाँ
0: स्वयं
1: जी,
0: रोजगार बनाना, कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह करना है, फिर ओहदी तैयारी उस अकॉर्डिंग होएगी।
1: अच्छा जी,
0: जिदा जे कोई बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक सेक्टर दे विच जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, तां उन्हूं थ्रेटिकल अपना बड़ा रखना पौगा, मजबूत रखना पौगा नाल नाल, क्योंकि ओहदे विच बच्चे नूं टेस्ट देना पौगा, वो टेस्ट कढ़ने पैणगे, ते नाल दी नाल उन्हूं अप टू डेट रहना पौगा भी कहड़े टेस्ट आ रहे ने, उन्हां दी तैयारी नाल दी नाल करदे रहना पौगा। 2 साल दे दौरान जदों ओहदा आईटीआई जद तक कोर्स कंप्लीट होगा, ओहदे नाल नाल ही उह बच्चा या तो चलो जे जेकर वो बच्चा अंडर एज है तां वो डिप्लोमा कर सकदा है, अगर वो एज ओदी 18 तक हैगी है तां वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर या फिर कोई भी इदां गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेडे वो अप्लाई कर सकदा है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
1: अच्छा जी,
0: बट जिवें आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे हां, जेकर बच्चे ने
1: हाँ जी,
0: प्राइवेट सेक्टर च आना है तां उहनूं बच्चे नूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पौगा, प्लस ओदे कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़े हैं बहुत मैटर करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट, मैं ये दसो भी जिहड़े वोकेशनल जिहड़े कोर्स होंदे ने ते आईटीआई, इन्हां दोनों दे खेत्र विच की फर्क हैगा?
0: वोकेशनल कोर्सेज जिहड़े के स्कूल्स दे दौरान बच्चे लै लैंदे आ, जिदां कटिंग सीविंग दे भी काफी हुंदे आ, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफी सारे हो जांदे आ, इलेक्ट्रिशियन वेल्डर इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जांदे आ, तां उहनां दा फायदा इह हुंदा है कि जिहड़े बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहुंदे आ
1: हाँ
0: उहनां
1: जी,
0: दे लई उह इक प्लेटफॉर्म इक बेस बन जांदे आ,
1: अच्छा जी,
0: उहनां नूं उहनां बारे पहलां ही नॉलेज हो जांदी है ना।
1: अच्छा जी,
0: ते जिहड़े बच्चों ने मान लो आईटीआई या फिर उद्योगिक खेत्र दे विच जाना नहीं है, या फिर
1: हाँ
0: उन्हां
1: जी,
0: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चों दे लई सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करने दे विच ही बेहतरी है उन्हां दी।
1: अच्छा जी,
0: हांजी
1: मैडम साहिबाना जी, तुसीं बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतों के नाल सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: स्रोतों का असीं धन्नवाद करते हैं जिन्ह ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े प्यार नाल सुनिया,
0: जी,
1: ते अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सुखवीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।